0: चारू भीत बनाई राजपथ रक्त नहीं दिन चार तैसे ही सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु समझ रच बिगड़िया ना हन अजहू समझ

0: भरण सकै महिमान जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी एक मन पुरख त्याय बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरण ले हृदय बसाव तव परम गुरु नानक गुण गाओ तास चरण ले हृदय बसाव तव परम गुरु नानक गुण गावो सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत समूह माई पाई गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ अजी कहिंदे हन जिस नूं किसे कम दा चज ना होवे तरीका ना होवे जीवन दा ढंग ना आउंदा होवे गुरु की मर्यादा विच चलण तों प्रतिकूल जिहड़ा इंसान है उसदा नाम कुछ अजी भाव खोटे उगणा नाल भरी होई ते शुभ गुणा तों खाली मंज कहिंदे हन मैनू हे वाहिगुरु मैं तां मंज
1: मंज कुचजी अमावन डोसड़े
0: मैं कुचजी हां मैनू मत नहीं है मैनू अकल नहीं है जिवें भाई गुरदास जी लिखदे हन हौं अपराधी गुणे गार हौं बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हौं पर घर जो हंदा इस शब्द विच वी औगुण गिने हन के इन्हां वीआं औगुणां दे मैं संयुक्त हां हे प्रभु मेरे ते दयालता करो इन्हां औगुणां तों मैनू बचा लवो हौं अपराधी गुनहगार हां बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हां पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देस ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती आ किरत घन मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बखसंदा वी औगुणा नाल मैं भरपूर हां पर तेरी शरण विच आया हां। संत शमेर सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन लिखिया होया पिछले दिनी पुस्तक छप गई है। उन्होंने अपनी वल्लों निम्रता सतगुरु जी के चरणों विच अपने औगुणा की लिस्ट इस प्रकार रखी है। कामी अकुटल कूर कपटी अकिरत घणी कटु काल ही कलम की कली काल के अधीन हूं। हे कलगीधर पिता मैं टेढ़े मन वाला हां मन विच मेरे कपट है कीती नू जानदा नहीं इस वास्ते अकिरत घण हां। कामी अकुटल कूर कपटी करित कणी कटु काल ही कलम की कली काल के अधीन हूं। खोटो खाल खामी खूब खंडत खराब खरो खालक न जान्यो खल्यो खाल न प्रवीन हूं। गाफल गुसैल गम रूरी भरियो ज्ञान हीन गामी गण्यो अवगुनी गुनानन मैं पीन हूं। घर के न काम को आराम को न नाम कछु। राम मोहे तारो तब जानो नाथ दीन हो। हे वाहिगुरु, जे मैनू मेरे वर्गे पापी नू तारो तां समझा के तुसी गरीबां नू नवाजन वाले हो। गुरु नानक देव महाराज जी अर्ज कर रहे हन अकाल पुरख दे चरणा विच के मैं कुछ अजी हां। उत्तम भगते दा ही ढंग है अपने ते गल लैके दूजियां नू सिखिया दिंदा है। किन्नी क कुछ अजी हां अमावन डोसड़े, मेरे विच डोसड़े मैने दोष गुनाह पाप अमावन मैने म्योंदे नहीं हन। पाप बहुते ही गुनाह हन मेरे विच जिन्हां गुनाहां नू मैं वर्णन करके नहीं दस सकदी। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे।

0: अपने मालक दा आनंद मानन वास्ते जावां। हे वाहिगुरु, मेरे ते दयालता करो, मेरे ते ए कृपा करो, मैनू गुण बख्श दियो। मैं औगणा करके भरपूर हां, चाहुंदी हां अपने मालक नाल मेल करना। मालक दी प्रसन्नता तो बिना सुख किथे, गुरु दी खुशी तो बिना मनुख कुछ भी करदा रवे। जेड़ी गल गुरु नू पौंदी है ओ गल करांगे ता गुरु दी प्रसन्नता। दुनियावी प्रमाण है, जेड़ी गल घर वाला चाहुंदा जे स्त्री ओ मन्ने ता ओ खुश हुंदा, नहीं ता नाराज। जेड़े जेड़े कर्मा च सतगुरु दी प्रसन्नता है, असी उन्हां नू जे त्याग दईए ते होर अपनी मर्जी दे कर्म करके गुरु दी प्रसन्नता लैणी चाहिए ता नहीं मिलेगी। हे सतगुरु, मेरे अंदर गुनाह हन, उन्हां गुनाहां दा सदका मैं किवें आप जी दा आनंद माण सकदी हां।
1: एक दू एक चढ़ंदियां,
0: नाले मैं जदों निगाह मार के वेखदी हां, एक तो एक चढ़दी तो चढ़दी तेरी सेवा विच। हे मालक, मैं एवें ही माण कर लिया सी, मैं अपने रूप दा अपने गुणा दा जे माण कर बवां ता तेनू कादा घाटा है। जीव रूपी स्त्रियां हन, परमात्मा दी भगती करन वाले वध तो वध हन, इसे करके साध संगत दी महिमा। हर दरख्त नूं, रुखां नूं, बूटियां नूं पानी देना पैंदा तां हरे भरे रहिंदे हन। कई रुख दरख्त नदियां दे किनारियां ते हुंदे हन, जड़ां विच पानी भरपूर है, पर मीह ना पवे पत्ते सड़न लग पैंदे हन। उपरों भी जल चाहिदा है। इसे तरह कई लोग अपने घर बह के बेअंत भजन कर लैंदे हन, पाठ कर लैंदे हन, माला फेर लैंदे हन, पर साध संगत विच नहीं आउंदे। थोड़े चिर दे बाद उन्हां नूं हंकार हो जांदा, मेरे वर्गा भजनीक कोई नहीं, मेरे वर्गा नतनेमी प्रेमी सिख कोई नहीं। जदों ओ साध संगत विच आउंदे ने, उन्हां दे मन दा माण दूर हो जांदा है कि जे मैं नित पंज बाणियां दा पाठ करदा पर गुरु दी हजूरी विच इत्थे तां सुखमणी साहिब पढ़न वाले बैठे हन, आसा जी दी वार दा रोज कीर्तन सुनन वाले, कथा सुनन वाले प्रेमी मौजूद हन, मैं 4 बजे उठ के तड़िया फिरदा, इत्थे तां 2 बजे उठण वाले भी सतसंगी हन, जिहड़े अमृत वेले उठ के सण के सी इशनान करके चौंकड़ा मार के बैठ के निरंकार दा पैरां बद्धी सिमरन करदे हन। साडे कोलों ते घंटा भी नाम नहीं जपिया जांदा। ਇਹ ਮਾਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਖਾ ਦਾ ਜਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੈਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ।
1: ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ,
0: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮੂਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਨਾਮ ਜਾਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

परमात्मा दे खजाने कदे खत्म नहीं हुंदे और इस मनुख दे कदे भरदे नहीं है, कदी नहीं भरदे, खत्म ही रहंदे ने, घाटे वाल नूं जांदे ने। भावें लख यतन करे कि कारू मांगू माया दे कंज जोड़ लवे, लेकिन फिर भी कमी रहंदी है। एक सियाणा बंदा कहंदा, इंसान गंजे कारू जमा कर दी बाज ते, घर शबी सुल्तान आली बाज ते, घर तू मेदा नहीं कि आखिर मुर्द ने अस्त, ता कि आमत जिंदगानी बाज ते, ता की होया। तो भाव है कि इसके खजाने कदी भरते नहीं और परमात्मा दे कदी खत्म नहीं होंगे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ने, परमात्मा के खजाने जेड़े ना अभंगा बेबूते। तो इस इंसान नूं पुत्र चाहिए ने, तीहां चाहिदियां ने, ए मान मंगदा है, ए तान मंगदा है, ए शक्ति मंगदा है, कुवत कूत मंगदा है, इस नूं सब पदार्थ दुनिया दे चाहिए ने। लेकिन सतगुरु कहंदे ने, ए कोई बहुत उच्चे पाए दी मंग नहीं है, बहुत वधिया मंग नहीं है। परमात्मा बहुत वड्डा दाता है और वाहल शख्सियत है, वो वड्डा दाता है और उस नूं तिल जिन्नी भी तमा नहीं है। पदार्थ दिंदिया वो कदी थकदा नहीं, वड्डा दाता तिल ना तमाए। लेकिन इस इंसान दी तमा तृष्णा खत्म नहीं हुंदी, वो ते वाहल शख्सियत है, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुग अंतर खा ही खाए। इसलिए सतगुरु एक होर जगह बचन करते हैं, ददा दाता एक है सबको देवन हार, दिन दे तोट ना आवे अगणित भरे भंडार। तो परमात्मा दियां अनेकां खूबियां विचों एक बहुत ही वड्डी खूबी यह है कि वो इस मंगते इंसान दे ऐब देखता है, औगण देखता है, लेकिन दस्तूर इसनू दे ही जाता है, सदियां तो दिंदा है, जुगा जुगंतरा तो दिंदा है, दुख देखता है,

0: दुखते खत है पर
1: उसके ऐब और दुख देखता है लेकिन दे ही जाता है। इसनू धन दौलत मालो असबाब और होर बहुत कुछ चाहिदा है। ये ठीक है इस दियां लोड़ां ने इस दियां जरूरतां ने लेकिन सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने हकीकी सच्ची और सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ मांग ए है मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना या फिर मांगो राम ते इकदान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम। पर इस इंसान की आदत है कि जदों मंगदा है असल नालों दूसरी चीज मंगदा है असल नालों दूसरी चीज मंगदा है ते दूसरी चीज में सतगुरु कहंदे कभी सुख नहीं हो सकता खुशी नहीं हो सकती मुसरत ते शादमानी नहीं आ सकती सतगुरु।

मैं तेरे दर्दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरम करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्ति।

शिम्बरस वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये वचन अपने पले बनांगे।

बड़ा जुल्मी बादशाह से औरंगजेब ने हिंदुस्तान दे लोकां ते इतना जुल्म कीता कि हद मुका दिती जुल्म दी। हिंदुआ नू जबरदस्ती मुसलमान बनान लगा, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिते। इतना जुल्म, धार्मिक रहो रीतां ते पाबंदी लगा दिती गई। उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी, और फिर आप अपने हाथ विच कृपान फड़ी और हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब नूं ए गल कही, तेरे जुल्म दी अत हो चुकी है, ते हुण मैं इस कृपाण दे नाल तेरा जुल्म खत्म करांगा। और सचमुच गुरु साहिबां ने मुगल राज दियां जड़ां पुट के रख दित्तियां। हिंदुस्तान विचों मुगल राज दा हमेशा वास्ते खात्मा कर दिता। इतिहास गवाह है कि गुरु साहिबां दियां कुर्बानियां ने इस जुल्मी राज दा अंत कर दिता।

गुरु साहिबा नु लिखी महाराज असी चाहने के तुसी शिकार ना खेडो रणजीत नगारा ना वजाओ तुहाडे सिंह साडे आदमियां नु कई वारी कुट के चले जांदे ने उन्हां नु रोको नहीं तां फेर सानू लड़ाई करनी पवेगी। एक पासे ए चिट्ठी भेजी ते दूसरे पासे लड़ाई की तैयारी भी कर दी। ए चिट्ठी गुरु साहिबां दे दरबार विच पहुंची तो साहिबां ने जवाब लिखिया अजमेर चंद सानू परमेश्वर ने इस दुनिया विच भेजे है संतां दी रक्षा करन वास्ते दुष्टां दा नाश करन वास्ते असी लड़ाई नहीं चाहते ते जेड़े सिंह ने ए शेर ने जद शेर नू को तंग करे ते फिर शेर ओनू सोधना भी जानता है। साडे सिंह किसे नू नजायज कुछ नहीं करते ना कुछ कहते ने पर जदू कोई ओना नू छेड़े ते फिर ओना नू ओ सोधना भी जानते ने। असी लड़ाई नहीं चाहते पर तुहाडी इच्छा जे लड़ाई दी है असी लड़ाई वास्ते भी तैयार हां। ए चिट्ठी गुरु साहिबां दी जदों पहुंची उस वक्त तक अजमेर चंद अपने होर साथियां नाल अपनियां फौजां लै के आनंदपुर साहिब ते चढ़ाई कर चुका सी। गुरु साहिबां नूं पता लग गया तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने विचार कीती शहर दी रक्षा कीती जाए तीन चार मील आनंदपुर साहब तो बाहर आके एक ऊंची जगह गुरु साहिबां ने भी मोर्चेबंदी कर ली।

पावन शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तुखारी राग विच उच्चारण किया है। तुखारी संत महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सावन सरसमना घनवर सैरत आए, मैं मन तन सह पावे पिर परदेस सदाए। पिर घर नहीं आवे मरिए हावे, दामन चमक डराए। सेज अकेली खरी दुहेली, मरन भया दुख माए। हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सुखावे। नानक सा सुहागण कंती, पिर कै अंक समाए।

ओ परमात्मा ओ हरि मेरे कारे पुत्र बन के जन्म लवे। जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बैठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा।

ताई सन्यासी पिता मेहता कालू जी कहन लगे पहचानन दा वार नहीं मंगे ता सिख्या दाता ने कहा बालके वो तेरे घर पुत्र बन के जन्म लेंगे पहचाने का किवें क्योंकि तू भगती नहीं कीती केवल तप कीता है पहचानन दा वार नहीं मंगया पहचाने का किवें होने सन्यासी पिता मेहता कालू जी उदास हो गए ते कहन लगे ओ नारायण मेरे घर पुत्र बन के जन्म लेंगे ओ मेरी गोद विच खेडन।

नारायण प्रगट होवेगा मैं पहचान नहीं सकांगा, कभी भी नहीं पहचानांगा। ता सिख्या दाता कहन लगे, बालके अगर तू भगती करता ते उन्ना दे जन्म लेंदिया तू पहचान लेना सी, पर तू भगती नहीं कीती, पहचानेगा हुण भी

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बालके त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच गृहस्थी होवोगे, फिर त्वाड़े कार्य हो नारायण आप प्रगट होवेगा।

जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया, उठ के खड़े हुए अपने आप नु कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मैता कालू जी उठे, धन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे, ते की देखते धन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा पर प्रकाश है।

मैं अरदास की थी मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरी गोद में खेड़े।

एकदा उठ के खड़े हो गए और तन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नू गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके ए तां हो सकदा है पर तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ए कदी नहीं हो सकता। पिता जी तुसी पिता हो, मैं पुत्र हां, मैं तुहानू मत्था टेका, ए ते हो सकदा है तुसी पिता होके मेरे पैरां ते मत्था टेको ए कदी नहीं हो सकता। पिता जी पुत्र रब क्यों ना हो जाए पर वो मापिया तो वड्डा कदी नहीं हो सकता। सात संग यह साडे वास्ते एक सिख है, कैडी उची सिख है, जेड़े बच्चे अपने माता पिता की परवाह नहीं करते, इस सिख है उन्होंने वास्ते कि देखो वो गुरु नानक साहब जिन्हां नूं दुनिया नमस्कारा करती है वो तां गुरु नानक साहब अपने पिता नूं मत्था टेकदे ने ते सानूं उपदेश देते ने कि पुत्र रब क्यों ना बन जावे पर वह मापिया तो वड्डा कदी नहीं हो सकता। मापिया विच एक वड्डा गुण है, माता पिता औलाद नूं जन्म देंदे ने, औलाद माता पिता नूं जन्म नहीं दे सकती, ये मापिया का वड्डा गुण।

जेड़े बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते कोई समझ लैन उन्हां दा दान पुन भी सफल नहीं होता। जेड़े माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हां दा कीता होया दान पुन तीर्थ यात्रा पाठ पूजा भी सफल नहीं होती। माता पिता की सेवा रब की सेवा के बराबर है, इस करके मापिया की सेवा करनी, अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना। पर देखते हैं एक मां बाप अठ धियां पुत्रां नूं पाल सकता है, पर जद उही माता पिता बुढ़े हो जाए तो वह जड़े अठ धियां पुत्र ने वो एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले तो जद बच्चे वड्डे हो जाते ने वो फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धियां पुत्रां दे हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण तो फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा अकिरत कणा दा

कई जगह असी गलत हो जाने हैं, क्योंकि जे असी नेक काम नहीं करते बुराइयां करते हैं तो फिर बच्चियां तो असी चंगे काम की किवें उम्मीद कर सकांगे। असी आप भी चंगे होइए और बच्चियां नूं भी चंगी सिख्या देइए ताकि स्वर्ग लभण की लोड़ ना पवे।

खिड़की खुली ताकि फिर खुली सतगुरु कह लगे आ गए मैं यकीन सी कि तू आवेगा अज कुछ भाव घटाया है कि नहीं कीमत घट की है कि नहीं आखन लगा मालिक धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कीमत तो कल वाली रखी है लेकिन एक रैत रख दिखी है केड़ी महबूबा दे कूचे अंदर मैं दिल में चिर जन था नंदलाल कहन लगे अपनी विथिया।

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसलिए आख्या, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिंचे पै जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नु सग कहा, कुत्ता कहा, आखन लगा तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हां। नंद लाल उसे सुन ले तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नु इन्ने प्यारे हुंदे ने कि छेज ते चढ़ जांदे हो, बाबा मैनू हाले ये अवसर प्राप्त नहीं होया, ये मौका नहीं मिले तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी की छेज ते बैठ मा। नंद लाल आगरा ते व्यंग पदार्थ सन तेरे खान पीन वास्ते, इत्थे की मिलता है, इत्थे की मिलता है। ते नंद लाल ने बड़े सुरूर विच आके, बड़े वजद विच आके, बड़ी मस्ती विच आके

काती मप मप काटों जम की फांसी, मप मप काटों जम की फांसी, एक ऊपर जिस जम की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा, मप मप काटों जम

मैं कब्रस्तान विचों लंघ रिया सां ते इस खोपड़ी ने आवाज दिती है ओए निघरिया तू घर आ जा मर के भी तो मेरे पास आना है ते हुणे ही आ जा एक थां ते बैठ जा क्यों थां थां ते भटकदा फिरना थां थां ते रुलदा फिरना इक्के थां ते बैठ के रब दी बंदगी कर पता नू लगता किथे मौत आ जानी है किथे अखीरला स्वास आना है इस खोपड़ी ने मैनू दस्या कि मैं इस मुल्क का बादशाह सां और नित नवे फैसले

सलामत अपने गुरु दे चरणा विच आ गया ते चरण पकड़ दे महाराज मैनू सिमरन दी दात दियो कर देवो मेरे नाम जपदा रहा तेरा जी दुनिया है मुसाफिर खाना रहन दा बसेरा जी।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेबे जर साहेबे जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते ओ दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है काशफ हुंदा है इंकशाफ करने वाला प्रगटान वाला इसम फाइल ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन सरार मीन्स बहुते पेद जीवन दे अनेका ही पेतां नूं सरलता विच कर देने वाला कौन है काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह बाबा नंद लाल जी कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते की हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है कि रोख रूहान की रोजी ना टारे रोजी ही राज विलोक तराजक रोख रूहान की रोजी ना टारे जेड़े तेनु मनदे ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करने वाले ने उना दी ते गल छड़ दे तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने उना दी ता गल की करनी उना वल ता हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है पर तू ते एडा बेअंत है एडा बेनियाज है रोजी हिराज विलोक तराज कर रोख रूहान की रोजी न टारे रोख मीन्स रुखियां रूहान जमा है रूह दी तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है जिन्हां विच लचक ना होवे लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है जड़ां गजा दे जांदियां ने हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है पर इक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा समझो कि मर गई अकड़ गई ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा उहदे विच लचक रहिंदी है ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनूं मुर्दा समझो क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं मुर्दा ही आकड़दा है पर गुरु साहिब जी इत्थे कहिंदे ने सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने उहनां नूं भी तू अपने गैबी खजाने विचों वड़ मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है जो तेतो मुनकर ने तेरियां दातां भी ले जांदे ने तेरियां बख्शियां भी मानी जांदे ने हे मुने परमेश्वर तेरियां नेमतां भी मानी जांदे ने ते तो मुनकर भी ने पर फिर भी तो उन्हां दी परवरिश करदा जाना है गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने कि मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है मैं हुण निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगे ही देना है मंगत्यां कोलो मैं क्यों मंगा मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है ते जे उनू मंग लईए तां फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी हाजत नहीं रह जांदी ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां किथों मंगा हो कौन है इसते मुकाबले दा दाता साचा साहिब है ते वड्डा दाता है उसदे भंडारे अखुट ने वाह
मुह दूजी नाही ठौर जिस कह हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे चुड़ जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालियां, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदों मैं दुआ की, जदों इल्तजा की, जदों खाली ठूठा अगे किया तो उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घर के अगों की आया, बीबिया माइया ने खैर तो कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहते मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्होंने माफ करो बाबा कहण नाल तुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों नहीं? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने निमंत्रण दिता है ते इथे अगे आ जा, तुसी ता कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ हो के नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ हो के नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ हो के नहीं मंगदा उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या डीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहिगुरु तूं भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोतके दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासू दा अत ढीठ निश्चय ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे, उदों तक कई बार तेनू शकां शकूकां दा शुभार दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपदी तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चय धार लिया मोहे